0: नमो प्रेता प्रेत देवेशो धर्मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो भूपे
0: नमो दादाने नमो मन माने नमो रोग रोगिन वस्तु शनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इशे नमो तंत्रंग
0: सदा सत्तदानं सर्वं परनाशी नूपे रूपे समस्त निवासी
1: सदा सिद्धदा बुद्धदा भेद कर्ता अदो उर्दर दंग अगंग ओंग हर्ता
0: परम परम परमेश्वर पुरुष पालंग सदा सर्वदा सदाता दयालंग।

0: दंगा भाव भंगत मित पर गुण गण उदार कर्म दृश्य धर्म सर्वा पर
1: नोबिंदे
0: मुकंदे उदार अपारे चत चक्र करता चत चक्र हरता चत चक्र दाने चत चक्र जाने चत चक्र पासे चत चक्र वासे चत चक्र माने चत चक्र दाने न सत्र न मित्र न परम न पितर न चतर न मित्र पर पवित्र आशीष दे सके आप जी पी सके आ गंज कर्म के आ पंज भरम
1: के आदित सोके
0: राज प्रभा धर्म तो जाए के आ सुख भरने के सर्वा भरने
1: जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है के

0: को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी जाब कर करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा जेते बदन श्रेष्ठ सब थार आप अपनी बूजू चार निरंकार निर्भकार निर्लंब आदो नीलो नादो संभ
1: जाको
0: कर पाहन अनुमान तुम्हा मूड कश भेद न जा।

0: सजा प्रथम संसार
1: कै रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई भूपा
0: जेरल
1: से राजा हो बैठा कहू सिमट भयो शंकर कैठा
0: स्वरूप
1: अब रचा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो मरे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है भद्रत तन जाए निहर हो ताके ताप तन कुमोहर हो
0: सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके न कोई
1: एक बार जंत मैं संभारा काल।

0: सागर सुवारना।
1: अपना गल्ला सम्राट स्वामी शोक मनो विसारे,
0: कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।
1: साथी साहिबा का नाही करते रहे,
0: करता तेरे सब कुछ है जिसे सो पावे।
1: रास सलाह तेरी ना मन बसावे,
0: नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कदेरे।
1: कह नान सच्चे साहिब क्या नाही करते रहे,
0: सच्चा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया।
1: शाम सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया,
0: सदा कुर्बान कीता गुर बिटो जिस दियां ये बढ़ियां।
1: कह नान सुनो संतो शब्द रूप यारू साचा नाम मेरा आधारू।
0: वाजे पंच शब्द तित कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया।
1: पंच दूत दवास कीते कार

0: सवारिया।
1: जय नानक लेवे बाजों क्या करी बेचारिया।
0: आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया।
1: आनंद सदा गुरु ती कृपा करे प्यारिया।
0: कर कृपा केलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया।
1: गुरु जन का मुँह टुटा धन का शब्द सच्चे सवारिया।
0: कहे नानक हो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया।
1: जस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जसन होर क्या करे बेचारिया।
0: एक परम भूले फिरे दे सिख नाम लाग सवारिया।
1: गुरु प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावे।
0: कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे।
1: आओ संत प्यारियो अकथ की करह कहानी।
0: करे कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईए।
1: मन तन सब सौंप गुरु को हुकम मनिए पाईए।
0: हुकम मनियो गुरु के रागा वो सची बाणी।
1: कहे नानक सुनो संतो कथियो कथ कहानी।
0: ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया।
1: चतुराई ना पाए किने तू सुन मन मेरिया।
0: ए माया मोहनी जिने परम भुलाया।
1: माया ता मोहनी तने की जंठ गौली पाईया।
0: कुरबान कीता तिसे बेटो जिन मोह मीठा लाया।
1: तो मन चंचल चतुराई किने ना पाया।
0: ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले।
1: तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले।
0: साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चितलाईए।
1: ऐसा काम मूले ना कीचे तंत पछोताई है।
0: सतगुरु का उपदेश सुन तू हो वे तेरे नाले।
1: मन प्यारे तू सदा सच संभाले।
0: अगमा गोचरा तेरा अंत ना पाया।
1: अंत ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान ही।
0: जी जन सब खेल तेरा क्या को आख बखाने।
1: आखे ता वेखे सब तू है जन जग तू पाया।
0: कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया।
1: सोर मर मन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
0: पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन वसाया।
1: जी जन सब तो दो पाए को एक परसने आया।
0: लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया।
1: नानक जिसनु आप तो ठातन अमृत गुर ते पाया।
0: भक्तां की चाल निराली चाला निराली भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना।
1: लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना।
0: खनियो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना।
1: गुरु प्रसादी जिनी आप जहर वासना समाणी।
0: कहे नानक चाल भक्तां जुग हो जुग निराली।
1: ज्यो तू चलाए तब चलो स्वामी और क्या जाना गुण तेरी।
0: तू चलाहे तिब चले जिना मार्ग पावे।
1: कृपा जन नाम लाए हैं से हर हर सदा ते आव ही।
0: कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
1: नाम सच्चे साहिब जो पावे तब चला वही।
0: ये वो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु।

तेरे कवन कवन बुन कह के गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बारण ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना सुख टल गुर सेवीस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

संपट जित सत सरनावन पावन पाती त्रिपत करी पूजा प्राण सेवक जी सेवे इन विद साहे।

अनुदिष्टम दृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आप ही आप सकल में आप उनके युक्त रह था प्यो था आप अविनाशी नाही कशखंड धारण तारियो ब्रह्मंड लख बे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभा वंत सकल संसार उदरत ने मंत प्रभ के सेवक सकल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुर कश्यप जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुन कृपा करे बड़भागे नाम जत पावे बिश्राम नानक तिन पुरख उत्तम कर मान जो कुछ करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए हो वैसो होए करने हर पछाण सोए प्रभ का किया जन्म मीठ लगाना जैसा सात ऐसा दिस्ताना जसते उपजत समाए समाए होए सुख निधानु नू बने आए आप सको आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल हो सकल चिंता जिस मन माहे तस्से बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अवनासी प्रभ आपे आप अपन की अकश न होए जसो प्राणी लोचै कोई तिस बिन नाही तेरे किस काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होय नाही मोया प्रभु की जो सलकट सोय तनवंता होय क्या को गर्भ बैजा सब कोई तस्का दिया दर बैस सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना क्या तावे जे कोई बैदा तार तिस जे बनहार जने का वार जस गुर प्रसाद उठ्यो रोग नान सोजन सदा रोग ज्यो मंदिर को थमे थमण ते गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पखान नाप चढ़ता रहे प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है ज्यो अंधकार दीपक प्रगास है गुर दर्शन देख मन होय विगास है ज्यो माओ ध्यान में मादक पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाशो धूर नानकी अरलोचा पूर मन मूर काय बिलाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तो सच तार जो कुछ करा सोई सुख मान पूला काय फिर जान कौन बसता ही तेरा संग लपट रसलो बीबा तंग राम नाम जप हिरदे माए नानक पासे तीकर जाहे जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन कर पाया ता जे मान लियो मन मोल राम नाम मिरदे मैं तो लाद खीप संत संग चाल अब त्याग बिकै जंजाल धंतन कै सब कोई मुकुजल अर दरगै सोई इहो वपार विरला वपार नानक ता कै सद बलिहार चरण साध के तोय तोय पी और साध को अपना जीव साध की दूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा उठ भागी पाई है साध संग कीर्तन गाई अनक बिंग दिशा दूर आके हर गुण गाय अमृत रस से आके उठ गई संत अंदर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृत को जो वालन हार भूखे को देवता धार सरमदान जाके दृष्टि माए पूर्व लिखे का लैना पाए सब की तिस्का वो करना जोग तिस बिंदु सुरुआ न हो गो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब तुझ निर्मल करनी कर कृपा जिस गुण नाम दी है नानक सो जन निर्मल थी या जाकै मन गुर की प्रतीत जना वैर प्रभचीत भगत पास सुनिय ते लोए जाकर हृदय को हुए सच करनी सचता की रह तो सच हृदय सच मुकै तो सच हृदय सच आया कार सच वरते सच आपा सार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नान सो जन सच सुमाता जलोक रूप नर एक नरंग किश उतरे गुंते प्रभिन्नो तुसे बजाए नानक अज सो वैसो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मै राख मन की तू प्रीत त्याग तुस्ते पर नहीं किश कोए सरमंत्र एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गभीर गहीर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधाल दयाल बख्शन साथ तेरे की चरणी पाओ नानक मन एह नाओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपाया सोई हो गर्ण बरन जाकर नेत्र भोर तिसका मंत्र न जाने होर अंध रूप मंगल साहब जाके सर्व सोग सुनिया करता कै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपी सरग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगत सुग पाया नानक तिस पुरख ने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाय सकल देव हारे व गाय पिता का जन्म के जाने भूत सकल प्रोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्या वैसे ते गुण मैं जाको ब्रह्माए जन्म रह फिर वह जाय ऊच नी सुसकै स्थान जैसा जनावे तैसा नानक ज्ञान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे रंग नाना बिदकीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक ओंकार नाना चलत करे गिन माए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना मित कर बंत बनाई अपनी कीमत पे पाई सब तिसकै हो सब घट तिसकै सब तिसकै ठाओ जब जब जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे

जाके मन प्रगटे कुन तासु आठ पैर और का नाम ले सच उपदेश सेव को दे मोह माया के संग न लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परमो दुख तै ते नासे तब तमाय ठंड वरताई अंध भया दुख नाठे भाई। जन्म मरण के मिटे देसे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुके निरपोय बसे सकल ब्याद मन ते खै नसे जिसका साधन कृपा धारी सा संग जपना मरारी चित पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हर जस सरवण। निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जन सगली मोई अपने चत प्रभाव बनाए अपनी कीमत पे पाए हर बिंदु जाना ही कोई सरमन त्रे को सोई ओत पोत रव्या रूप रंग पे प्रगास साध क्या संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक।

जी जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार, नानके को पसरे आद जकै दस्तार अष्टपदी। आप कथा आप सुनने हारो, आपे का विस्थारो, जा तिस भावै ता सिष्ट उपाय, अपने भाणे लै समाय। तुम ते भिन्न नहीं किछु होए, अपन सूत सभ्यक परोए, जा को प्रभ जीउ आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत् का बेता, नान सल सिष्ट का जेता। जी जंतर सबता के हाथ, दीन दयाल नाथ को नाथ, जिस राके तस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसार है, तिस्ता जबर कां को जाए, सब श्री निरंजन राय, जी की जोत जा के सब हाथ, अंतर बार जानु साध, गुण बिन निदान बेअंत पार, नानक दा सदा बलिहार। पूरन पूरे दयाल, सब उपरोध कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी अभ्याप, प्रतपाल जीन बो भांत, जो जो रचे सो तिस त्यात, जिस भावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मनंतर विश्वास कर माने, कर नानक जाने आम। जन लागा रेक नाय, तिसकी आसन बृति जाए, सेव को सेवा बने आय, कंबूज परम पद पाई, सेव पर नहीं विचार, जाके मन बसे निरंकार, बंधन तोर पै निर्वैर, अंधन पूजे गुर के पैर, ले सुखिय पर लोक सुहेले, नानक कर प्रभा पे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्र परमानंद, राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ जी का करो उदार, अमृत बचन के गुण गाओ, प्रांतन कह सुहाओ, आठ पैर प्रापे को नेरा, मिटे गण बिन से अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन विषय नानक बल पावो। हलत पलत दुआलियो सुवार, राम नाम मंत्र उतार, पूरे गुर की पूरी देखिया, जिस मन बसै ते साज प्रीखिया, मंत्र नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पो जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दर गने बै खेप तुम्हारी, एक काटी कराको मन माए, नानक बोर ना बह जाए, तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उभरे रख नार ते आए, निरपो जपड़े सकल पो मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे, जिस प्रभ राखे तिस नाहीं दूख, नाम जत मन हुआ सुख, चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार, सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक दा की कारज पूरा। मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पेख तुद्र शिष्ट, चन कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर रूप, धन सेवा सेवक प्रवान, अंतरजामी पुरख प्रधान, जिस मन बसे सोत निहाल, दाके निकनाबद काल, अमर पै अमरा पद पाया, सा संग नान कर त्याया। सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर बिनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संगंत प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सकल समग्री अक्षट माए, अनक रंग नाना दिष्टाए, नौने दमंत प्रभ का नाम, देई मैं इसका विश्राम, सुन समाद कना ते नाद, कहना जाइए चर्च विस्माद। तिन देखिया जिस साहब दिखाए, नौ तुसन सो जी पाए, सुवंतर सो बार अनंत, कट कर ब्याप रहा भगवंत, तरन माए आकाश प्याल, सब लोग पूर्ण प्रतपाल, बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी जा कहता सक कर्म, पौन पानी बसंतर माए, चार कुण दया दिशा समाए, तुम तिस्ते पे नाई कोठा, कुर प्रसा नान सुख पाओ, वेद प्राण से मृत मैं देख, सस्य सूर नक्षत्र मैं एक, बाणी प्रभु की सबको बोल लै, आप डोल कब हूं डोल लै, सर्व कला कर खेल खेल, मोल न पाइया गुणा अमोल, सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत, तारे स्वामी उत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक मैं विश्वास, संत जना का पिकन सा ब्रह्मो, संत जना के हृदय सब धर्मो, संत जना सुनो सो बचन, सर्वव्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकी रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो ऐसो सुकुमान ने, करन करावन हर प्रभ जान, अंतर बसे बार पियो ही, नानक दर्शन दे सम होई, आप सतगी सब सत, तिस प्रभु सगली युद्ध पात, तिस भावे दा करे विस्तार, तिस भावे दा अहंकार, अनकला लखी ने जाय, जिस भाव सलाई मिलाए, कमण निट कमण कई दूर, आपे आप भरपूर, अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जना बुझाए, सरबुदा प्रतारा, सरब नैन आपे खनारा, सकल समग्री जा का तना, अपन जा साबी सुना, अपन जाने खेल बनाया, गया कारी की नी माया, सब कह मद लिप्त हो रहा, जो कुछ कहना सो आपे कह, आगे आवे आगे जाए, नानक जा पावे तले समाए, थे हो सुनाई बुरा रह, कहो किने किश करा, भला कर तू दत्त नी की, आपे जाने अपने जी की,
ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਹ ਚੋਤ ਬੋਤ ਆਪਣ ਸੰਘਰਾਹ ਚੋਤ ਆ ਕੀ ਅਤਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਦਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਦਸਕਾ ਗਿਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕੇ ਉਹ ਜਾਨ ਜੋ ਜਨ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੂਸਰੇ ਦੈ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਬਜਕਤ ਆਇਆ ਜਨ ਨਾਮ ਕਹਿ ਸਵਾਉ ਜਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਜਿਤਾਵੈ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਦਾ

आसनित त्यागो तारंग संजना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो अगन साध संग अगन सागर तरहो हर तन के परले हो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमृतस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साधक बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक कै निस्तार सफल जीवन सफलता कै संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्द नाद वाजै सुन सुनंद करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक कुदरे तिनके साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिटगे बैर भय सब रेन अमृत नाम सा संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकार तेरा ते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक ने बीके पमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एक अग्रचीत अशकुनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोत निदान सर्व इच्छा था कि पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रगट सब लोय सब ते उच पाए स्थान बोर्न होवे अमन जान अर्थन खाट चले जन सोई नानक जिसे प्राप्त हुए किम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इनान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मद सकल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता हे फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने